0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
3: You're listening to City FM 89.
5: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
6: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
5: बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना?
6: इन्वेस्ट पार्क?
7: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
6: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
8: मैं हूँ सनम सईद और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क। जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैज 5G, हमारी सुपर पावर।
9: City FM 89.
10: You got me going crazy.
11: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
12: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
3: City FM 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: TFM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: You're listening to City FM 89.
0: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
2: City FM 89.
3: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
4: Government securities में invest करना है. आज apply करने का आखिरी दिन है और bank का time भी खत्म होने वाला है.
3: इसलिए bank जाने की क्या जरूरत है? Invest Park है ना?
4: Invest Park?
5: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार. इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें.
6: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा.
7: मैं हूँ सबा कमर और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क. जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो. जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी. जैज 5G हमारी सुपर पावर.
1: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
8: यू आर लिसनिंग टू द ब्रेकफास्ट शो विद शर्मीन.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 a.m.
3: City FM 89.
1: On the dial.
3: Give your breakthrough tech idea the launchpad it deserves with Prime Minister's Spark and Elevate program. A national research and innovation funding initiative. Up to Rs. 100 million funding to convert bold ideas into functional prototypes. And up to Rs. 200 million to transform functional prototypes into market-ready solutions. Apply today at segms.ignite.org.pk. Last date, 26 October. Spark the idea, elevate the impact. A project of Ignite, Ministry of IT and Telecom.
4: Naya Pond's Body Lotion, jisme hai 100 tola gold. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
5: पेपा कार्ड है
6: तो फाइव.

0: Prolong your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
2: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
4: City FM 89.
5: अपने टेक्नोलॉजी आइडियाज को दें उड़ान विद प्राइम मिनिस्टर्स पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम अ नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन फंडिंग इनिशिएटिव बोल्ड आइडियाज को फंक्शनल प्रोटोटाइप्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 करोड़ रुपए तक जबकि फंक्शनल प्रोटोटाइप्स को मार्केट रेडी सॉल्यूशंस में बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए तक फंडिंग आज ही अप्लाई करें एट segms.ignite.org.pk आखिरी तारीख 26 अक्टूबर स्पार्क द आइडिया एलिवेट द इम्पैक्ट A project of Ignite, Ministry of IT and Telecom.
6: मैं हूं सजल अली और मैं हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े और तेज तरीन 5G नेटवर्क जैस 5G पे तो अब जैस 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो जैस 5G आपका मर्जी भी आपकी जैस 5G हमारी सुपर पावर
7: पेपा कार्ड है
8: तो फायदा है

0: पेपक आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: माँ का दूध हर बच्चे की पहली और बेहतरीन गिज़ा है। ये बच्चे को ज़रूरी गिज़ायत फराहम करता है, बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत बढ़ाता है और उसकी सेहतमंद नशोनुमा करता है। पैदाइश से 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और 6 माह के बाद इजाफी गिज़ा के साथ 2 साल तक दूध पिलाना जारी रखें। याद रखें, कोई भी डब्बे का दूध माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं।
2: City FM 89. We're playing your song.
3: You're listening to
4: Dark Room with Dabu Javeri.
0: You're in the Dark Room, City FM 89. That was Valaiti Neza, or as we called her in the show, where we were not allowed to talk in English and we had to play English artists and only name them in Urdu. That was Valaiti Neza, Britney Spears. And let's move on to more incredible music. This is an R&B show, City FM 89. Pussycat Dolls up next with Buttons.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 PM.
0: City FM 89.
2: You got me going crazy.
3: This show is brought to you by State Bank of Pakistan.
4: नया पॉन्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
5: मैं हूँ सजल अली और मैं हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े और तेज तरीन 5G नेटवर्क जैस 5G पे. तो अब जैस 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैस 5G आपका, मर्जी भी आपकी. जैस 5G, हमारी सुपर पावर.
6: City FM 89, we're playing your song.
7: You're listening to
8: Dark Room with Tapu Javeri.
9: I hope the Dark Room family is doing well. We are in the Dark Room and we are playing your ton of R&B music. That was Nelly with Hot in Here, and this is Usher with Yeah.

0: your road rage.
1: City FM 89.
2: मैं हूँ सबा कमर और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क। जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैज 5G हमारी सुपर पावर।
3: माँ का दूध हर बच्चे की पहली और बेहतरीन गिजा है। ये बच्चे को जरूरी गजाइत फराहम करता है, बीमारियों से लड़ने की कुत बढ़ाता है और उसकी सेहतमंद नशोनुमा करता है। پیدائش سے 6 ماہ تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں اور 6 ماہ کے بعد اضافی غذا کے ساتھ 2 سال تک دودھ پلانا جاری رکھیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں۔
1: سیری ایف ایم 89،
4: یور ڈرائیو الانگ کمپینین،
1: یور لسننگ ٹو
5: ڈارک روم وِد ٹپو جویری۔
6: You're in the dark room, City FM 89. Mariah Carey doing an incredible sample of Tom Tom Club's Genius of Love and creating that track. Meanwhile, this is a duet with two fabulous singers, Nelly and Kerry Rowland from Destiny's Child, doing Dilemma.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: मैं हूँ सनम सईद और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क। जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैज 5G, हमारी सुपर पावर।
0: You're listening to
2: Talk Room with Dapu Javeri.

0: The perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: मैं हूँ सबा कमर और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क. जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी. जैज 5G हमारी सुपर पावर.
2: माँ का दूध हर बच्चे की पहली और बेहतरीन गिजा है. ये बच्चे को जरूरी गजाइत फराहम करता है, बीमारियों से लड़ने की कुव्वत बढ़ाता है और उसकी सेहतमंद नशोनुमा करता है. पैदाइश से 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और 6 माह के बाद इजाफी गिजा के साथ 2 साल तक दूध पिलाना जारी रखें. याद रखें, कोई भी डब्बे का दूध माँ के दूध का नेमल बदल नहीं.
3: You're listening to
4: Future Sounds.
5: Future Sounds. Future Sounds.

0: your road rage.
1: City FM 89.
2: मैं हूँ सनम सईद और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क. जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी. जैज 5G, हमारी सुपर पावर.
0: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
0: Future Sounds.
3: Future Sounds.
0: Discover 5 new tracks, fresh drops, and the artists you need on your playlist. Stay ahead of the vibe.

0: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
1: माँ का दूध हर बच्चे की पहली और बेहतरीन गिज़ा है. ये बच्चे को ज़रूरी गिज़ाइत फराहम करता है, बीमारियों से लड़ने की कुव्वत बढ़ाता है और उसकी सेहतमंद नशोनुमा करता है. पैदाइश से 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और 6 माह के बाद इजाफी गिज़ा के साथ 2 साल तक दूध पिलाना जारी रखें. याद रखें, कोई भी डब्बे का दूध माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं.
2: City FM 89.
3: You're listening to
4: Non-stop hits.
5: Non-stop hits.

0: launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 11:30 p.m.
3: City FM 89, we're playing your song.
4: Naya Pond's body lotion, jisme hai 100 tola gold. बस पोर्टल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
5: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89.
3: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
1: यू आर लिसनिंग टू
0: नॉनस्टॉप हिट्स.